अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

Radio Olive, your happiness frequency. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: cool song.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।

0: ऑफिस बॉय तो हर रोज कॉफी पिलाता है, एक बार उसे पिलाकर देखिए।
1: जनाब, आपको हैप्पीनेस ना मिले तो कहना,
0: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास।

0: ऑफिस बॉय तो हर रोज कॉफी पिलाता है, एक बार उसे पिलाकर देखिए।
1: जनाब, आपको हैप्पीनेस ना मिले तो कहना,
0: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 May तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1068.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओनली 106.3 FM.

0: रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडो ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक।
2: नंबर
1: 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार। लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव. राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम. जियो बिंदास.
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है Cool Song.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान।
0: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल।
1: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस। तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में। योर अल्टीमेट ईद डेस्टिनेशन।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: मॉडर्न कट्स तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर, अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

0: एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर, अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaign.

0: सिंपल इफेक्टिव इंटीग्रेटेड. कॉल 3009-1063 और 3082-1063.
1: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम. मैं हूं जैकी श्रॉफ. रेडियो ऑलिव बोलो बिंदास.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: कट तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

इमेजिन आप घर पर चाय पी रहे हो और ऑफिस मीटिंग में आपका एआई वर्जन बैठा हो. ये सब जोक लग रहा है ना, पर है नहीं. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू. शो का नाम है टेक टॉक. फ्राइडे का दिन है, लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, कई दिनों से छुट्टी है और कई दिनों तक रहने वाली है. मतलब ये 4-5 दिन ना इतने अमेजिंग लग रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि यार मतलब बस आप और मैं और एक खूबसूरत सा टाइम और कॉन्वर्सेशन. सो आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की. एआई अवतार्स और वॉइस क्लोन इतने एडवांस हो गए हैं कि कंपनीज उन्हें मीटिंग में यूज करना स्टार्ट कर रही हैं. बेसिकली एआई आपकी वॉइस, स्पीकिंग स्टाइल और फेस एक्सप्रेशन लर्न करता है और फिर वर्चुअल मीटिंग में आपकी जगह रिस्पॉन्ड भी कर सकता है. इंटरेस्टिंग बात है ना. कुछ जो स्टार्टअप्स हैं वो ऑलरेडी ऐसे टूल बना रहे हैं जो मीटिंग समराइज भी करते हैं और आपकी तरफ से बेसिक रिप्लाई भी दे देंगे. सो फ्यूचर में एक्सक्यूजेस भी थोड़े से वियर्ड होने वाले हैं कि सॉरी यार मेरा एआई जो था वो थोड़ा बिजी था, मीटिंग अटेंड कर रहा था. लेकिन स्कैरी पार्ट क्या है, डीप फेक और आइडेंटिटी का मिसयूज, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है यार. इसीलिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि फ्यूचर में डिजिटल आइडेंटिटी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और टेक्नोलॉजी का ये फेस जो है वो बहुत ही फैसिनेटिंग भी है और थोड़ा डेंजरस भी. सो आपको क्या लगता है, अगर आपकी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए ऐसे कोई एआई मिल जाए तो आप दिन भर में कितनी मीटिंग्स उससे अटेंड करवाने वाले हो और कितनी खुद करने वाले हो? बाय द वे दिस इज मी मुस्कान विद यू. नंबर है 3311063. कैसा चल रहा है आपका लॉन्ग वीकेंड बताइए मुझे. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब। खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: The big, biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
5: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
6: Hey, this is Liana De Cruz.
7: This is me, Hrithik Roshan.
8: Hi, I'm Alia Bhatt.
9: Hi, main hu Vivek Anand Oberoi, and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
10: Radio Olive, Jio Bindas.
11: G-E-C.

So, भाई आज फूड डिलीवरी हो रही है, कल वॉशिंग मशीन जब आप ऑर्डर करोगे तो वो भी आसमान से आ सकती है। अब दुनिया सिर्फ स्मॉल ड्रोन्स तक लिमिटेड नहीं है। So, भाई बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े कार्गो ड्रोन्स जो हैं वो टेस्ट हो रहे हैं, जो हैवी पार्सल डिलीवरी कर सकते हैं, और कुछ ड्रोन्स तो स्पेशली इमरजेंसी मेडिकल डिलीवरीज के लिए यूज हो रहे हैं। ट्रैफिक में एम्बुलेंस लेट हो सकती है, ड्रोन डायरेक्टली मेडिसिन या ब्लड सप्लाई पहुंचा सकता है, वो भी बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनटों में। सो फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत क्रेजी है कि ड्रोन जो है वो हाईवेज बनेंगे, यानी स्काई में इनविजिबल एयर रूट्स। और स्मार्ट सिटीज का फ्यूचर ना काफ़ी डिफरेंट लगने वाला है। डिलीवरी बॉयज़ के साथ डिलीवरी ड्रोन्स भी होंगे। जो कंसर्न है वो है नॉइस, प्राइवेसी, एयर ट्रैफिक और सेफ्टी। सो अब इन सब के बीच में सारी जगहों पर अलग अलग तरह के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं विद द टाइम। अगर आप बहुत करते हो तो आपने ये सब देखा होगा। बाय द वे थोड़े दिन पहले बहुत वायरल हो रहा था कि कुछ जगहों पर होटल डिलीवरीज के लिए जो AI है वो आता है, मतलब रोबोट आता है और आपको सारा आपका जो फूड है, जो सारी चीज़ें हैं, वो कुछ कंट्रीज में होटल्स में अब रोबोट्स देने के लिए आते हैं। सो आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है किसी कंट्री में, बताइए मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन in Old Airport Road or Paye spectacular festival offer.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सो आपके घर पहुंचने से पहले घर को पता चल जाएगा कि आप आ रहे हो। फ्यूचर होम सिर्फ स्मार्ट नहीं, प्रिडिक्टिव भी हो रहे हैं। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद योर शो का नाम है टेक टॉक एंड आज है फ्राइडे। सो आई एम श्योर आपके बहुत सारे प्लान्स होंगे। इतना लॉन्ग वीकेंड मिला है, ईद की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों के लिए स्पेशल टाइम है। मतलब हम यहाँ पर अगर AI की बात करें तो आपकी डेली हैबिट्स ना AI लर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप यूजुअली 6:30 पर घर आते हो तो AC ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, लाइट्स एडजस्ट हो जाएंगी, कर्टेंस क्लोज हो जाएंगे, म्यूजिक भी स्टार्ट हो जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है कि स्मार्ट होम डिवाइसेस अब स्लीप पैटर्न और एनर्जी यूजेस भी मॉनिटर करने लगे हैं, यानी घर ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिव सिस्टम बन रहा है। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको आपसे ज्यादा आपका घर जानने लगे तो प्राइवेसी एक्सपर्ट्स इसी चीज पर कंसर्न रेज कर रहे हैं और इसीलिए कन्वीनियंस के बाद हम काफी पर्सनल डेटा शेयर कर देते हैं कि यार ठीक है, मतलब कन्वीनियंस तो है बट स्टिल फ्यूचर होम्स का कंफर्ट लेवल ऑनेस्टली इंप्रेसिव है। सो यू टेल मी कि आपके लिए अगर ऐसे गैजेट्स आ जाए मार्केट में, इजीली अवेलेबल हो जाए, तब आप इन्हें यूज करोगे या फिर नहीं। 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio. Bindaas.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: The big, biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान।
4: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल।
3: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस। तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में। योर Ultimate Eid Destination.
5: J-E-C-K.

आप ना बहुत ज्यादा या तो सैड हो, बोर्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, एप्स को पता चल सकता है ये सब. अब मैं बताती हूँ कैसे. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है टेक टॉक, वेयर वी ओनली टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी. और ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल वीकेंड है वेयर वी आर यू नो मतलब डूइंग एवरीथिंग जो हमें बहुत टाइम से करना था. इतना लंबा टाइम मिल गया है हमें यू नो फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, फोन कॉल्स पे बात करने के लिए और कुछ शॉपिंग करने के लिए. सो इसी के साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग एप्स ना सिर्फ ये नहीं देखते कि आप क्या बाय करते हो, वो ये भी स्टडी करते हैं कि कितनी देर प्रोडक्ट देखा, कब स्क्रॉल जो था वो स्टॉप किया, किस मूड में शॉपिंग ज़्यादा करते हो आप. और सबसे अच्छी बात ये है कि एल्गोरिदम इमोशनल पैटर्न अंडरस्टैंड करने लगे हैं. मतलब मेरा तो पूरा पैटर्न समझ गया है मेरा फ़ोन. इसीलिए कभी कभी आप सिर्फ कैजुअली सर्च करते हो और फिर हर जगह वही एड दिखने लग जाते हैं. सो इसे कहते हैं स्ट्रेस शॉपिंग रियल फिनोमिनल. पीपल डोपामिन के लिए इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, इसीलिए ऐप्स जो है वो लिमिटेड ऑफर, ओनली टू डेज लेफ्ट जैसे जो ट्रिक्स हैं वो यूज़ करते हैं. और ये सबसे बड़ा डेंजर क्या है आपको पता है, कभी कभी हम मूड बाय करते हैं और कभी कभी प्रोडक्ट. सो आपको डिसाइड करना है कि बेसिकली आपको इस ट्रैप में पड़ना है या नहीं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. हाउ इज योर वीकेंड गोइंग बताइए मुझे 3311063 पर. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: जब जब तू मेरे सामने आती है, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है. तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है. आ देख, देख तू मेरा पागलपन, कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूं. ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूं, बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे.

यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू. आवर शो का नाम है टेक टॉक और आज फ्राइडे है. लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, इतनी सारी छुट्टियों के बीच में लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी. सो हेडफोन्स अब सिर्फ म्यूजिक के लिए तो नहीं है, सर्वाइवल के लिए भी यूज हो रहे हैं. इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है, पीपल नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स पीस के लिए यूज़ कर रहे हैं, नॉट जस्ट सॉन्ग, नॉट जस्ट साइलेंस, क्योंकि मॉडर्न लाइफ ऑनेस्टली बहुत लाउड हो गई है. ट्रैफिक, ऑफिस नॉइस, नोटिफिकेशन, रील्स, बैकग्राउंड साउंड, मतलब ग्लोबली आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन है वो बहुत कंटिन्यूसली स्टिमुलेटेड रहता है. रिसर्च कहती है कि कॉन्स्टेंट नॉइस स्ट्रेस हारमोन्स इंक्रीज करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग साइलेंट ऑडियो मोड पे या फोकस प्लेलिस्ट पे या फिर वाइट नॉइस जिसे कहते हैं यूज करते हैं. और फ्लाइट में तो नॉइस कैंसिलेशन जो होता है वो हेडफोन्स लिटरली ब्लेसिंग लगते हैं. मतलब मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई मेरे पास ये नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स तो बहुत जरूरी है होना. टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली कंफर्ट टूल भी बन रही है और नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट टूल. सो लास्ट टाइम जब मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी तो मेरे बगल में बहुत सारे बच्चे थे एंड आई पर्सनली रियली लाइक किड्स. पर जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते तो आपको एक ट्रैवल एंजाइटी हो रही होती है और उसके साथ जब आप इतनी सारी आवाजें और बच्चों के रोने की आवाजें सुनते हो तो आपको और ज्यादा एंजाइटी होने लगती है. उस टाइम पे ये जो हेडफोन्स हैं ये बड़े ही काम आते हैं. बाय द वे यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: काम किया छोटे तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलविद पे।
5: TECHNO

किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

सिर्फ सोच कर कंप्यूटर कंट्रोल करना अब मूवी सीन नहीं रहा है। साइंटिस्ट अब ये ऐसे सिस्टम टेस्ट कर रहे हैं जहां ब्रेन सिग्नल्स डायरेक्टली कंप्यूटर को कमांड देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में, और मैंने तो ये सिर्फ साइंस फिक्शन में ही देखा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान, और शो का नाम टेक टॉक, वेयर वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। भाई इतना लॉन्ग वीकेंड, इतना रिलैक्सिंग, मतलब अलग ही मजा आ रहा है। बाय द वे आई हैड वन स्टेकेशन, उसकी मैं बात करूंगी थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ऑलरेडी बेसिक कम्युनिकेशन और मूवमेंट ब्रेन सिग्नल से परफॉर्म कर रहे हैं। एलन मस्क की एक न्यूरालिंक भी है, इसी फील्ड में काम कर रही है। सोचिए, मतलब ऐसा होगा कि रिवॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब इमेजिन करो टाइपिंग विदाउट हैंड्स, कम्युनिकेशन विदाउट स्पीकिंग। लेकिन एथिकल क्वेश्चन ये भी है कि अगर फ्यूचर में थॉट्स भी डेटा बन गए तो प्राइवेसी का क्या होगा। मतलब सोचिए, आप कुछ सोच रहे हैं और वो ऑलरेडी यू नो पता चल रहा है सब कुछ। सो टेक्नोलॉजी पावरफुल होती जा रही है और इसीलिए डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। बाय द वे यू टेल मी कि जब ऐसा होगा तब आप ज़्यादा इंजॉय करोगे और रिलैक्स करोगे, या फिर आपको ज़्यादा टेंशन होगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106 3। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। Visit Malabar Gold and Diamonds today.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सो भाई लोग जो है स्मार्टफोन से थक गए हैं और सिंपल फोन्स की तरफ वापस जा रहे हैं। ये मैंने थोड़े दिन पहले अपनी मॉर्निंग जो मैं आपसे बात करने आती हूँ लाइफ मस्त है मैं वहाँ पर भी बात की थी। सो इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि जेंजी और मिलेनियल्स वापस से कीपैड फोन्स जो है वो वापस से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी मार्केट में नए कीपैड फोन्स आ रहे हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान, शो का नाम टेक टॉक, वेयर वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। सो भाई लॉन्ग वीकेंड रिलैक्सेशन और इसी के बीच में आपको और मुझे समझ में आ गया कि फोन हमारी लाइफ में ज्यादा जरूरी है नहीं। क्यों? क्योंकि हो रहा है डिजिटल डिटॉक्स। लोग फील कर रहे हैं कि स्मार्टफोन अटेंशन कंज्यूम कर रहा है, मतलब इतनी एंडलेस स्क्रॉलिंग है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, डिस्ट्रैक्शन जो है वो भी बहुत ज्यादा है और इसी के साथ मतलब इतनी कभी कभी तो नेगेटिव न्यूज आती है पढ़कर ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है इस दुनिया में। सो ओल्ड नोकिया का जो रिंगटोन है वो सुनते ही बचपन की याद आ जाती है और बल्कि स्टडीज ये शो करती हैं कि कॉन्स्टेंट स्क्रीन एक्सपोजर अटेंशन स्पैन रिड्यूस कर देता है, इसीलिए बहुत सारे लोग मिनिमल टेक लाइफस्टाइल की तरफ ट्राई कर रहे हैं। और सबसे फनी बात पता है क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब सिंप्लिसिटी लग्जरी लगने लग गई है। समटाइम्स दिस इज वॉट आई फील। वॉट अबाउट यू? आप मुझे बताइए 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए

0: तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: TECA

वेलकम बैक. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM. आई एम श्योर आप ड्राइव करके या तो किसी प्लान की तरफ जा रहे हो या फिर बस दोस्तों से मिलने के लिए, बस थोड़ा सा उनके साथ चाय पीने के लिए जा रहे हो. बाय द वे, फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि लोग पेरिस नहीं स्पेस में जा सकते हैं. स्पेस टूरिज्म अब स्लोली रियलिटी बन रहा है. ऐसा धीरे धीरे ना हर दिन कुछ ना कुछ सुनने के लिए मिलता है. You are listening Radio Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और ये है टेक टॉक. भाई बात करते हैं स्पेस कंपनी लाइक स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन या फिर वर्जिन गैलेक्सीटिक की, जो कि स्पेस ट्रैवल को कमर्शियल बिजनेस बना रही है. सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी स्पेस होटल्स कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं. मतलब कोई कैसे सोच सकता है, हम लोग मतलब कल के बारे में नहीं सोच पाते. मुझे तो ऐसा लगता है कि कल सुबह जब मैं ऑफिस आऊँगी तो क्या पहनूंगी, ब्रेकफास्ट क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता. और ऐसी कंपनीज हैं जो स्पेस में होटल्स बनाने के बारे में सोच रही हैं. इमेजिन विंडो के बाहर क्या दिखेगा, अर्थ. लेकिन ऑब्वियसली अभी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होगा, मिलियंस ऑफ डॉलर में ये आपको पड़ेगा. और ऑनेस्टली जीरो ग्रेविटी में बिरयानी खाते हुए ईद की बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. बट हिस्ट्री देखो, फ्लाइट्स भी वंस इट वॉज लग्जरी, आज बहुत नॉर्मल है. मे बी फ्यूचर जनरेशन जेन्युइनली स्पेस वेकेशंस पर प्लान करे और हम और आप बस यू नो देखते रहें कि क्या नया चल रहा है. बाय द वे, दिस इज द टाइम आई हैव टू से कि मुझे जाना पड़ेगा. कल मिलते हैं सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इस लॉन्ग वीकेंड को खूब इंजॉय कीजिए. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान।
3: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल।
2: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहाँ इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस। तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में। योर अल्टीमेट ईद डेस्टिनेशन।

देखो यार, सैड होने के 1000 रीजंस हो सकते हैं, लेकिन खुश और मुस्कुराने के लिए सिर्फ एक ही रीजन चाहिए, एक ही वजह चाहिए, प्यारा सा गाना यार। वो कोई चला दे ना तो बस दिन बन जाता है, क्या कहूँ, शाम बन जाती है। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, आपके साथ हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट करने आ गया हूँ जनाब। और हैप्पीनेस तो अपने आप दुगनी हो जाती है जब पता चलता है कि वीकेंड के दिन आज अपन का टाइम है। कोई नहीं है जी, आज सिर्फ अपनी चलेगी, अपनी मनपसंद का गाना, अपनी मनपसंद का खाना, अपनी मनपसंद की जगह, अगर ये सब हो जाए तो हैप्पी वाला वीकेंड तो हो गया ना जी। तो चलिए, आप कैसे हैं ये ज़रूर बताइएगा मुझे। इंस्टा पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और आप कैसे हैं, आपका हाल चाल और बाकी कुछ हमारा भी जानना हो तो बिल्कुल आप बेशक मैसेज कर सकते हैं। दिल की आवाज़ आपके दिल की सुनेगी, कौन सा गाना चलाना है ये ज़रूर बताइएगा। फिलहाल एक गाना आज पहले मेरी ओर से आपके लिए, ताकि आप भी कह सके सुन के हैप्पी वीकेंड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

भाई वैसे एक वीकेंड को शॉर्ट में डिस्क्राइब करना तो मैं कहूंगा कभी खुशी कभी गम, है ना। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ जनाब। वैसे हैप्पी वीकेंड को हम कभी खुशी कभी गम भी कह सकते हैं, क्योंकि आज मॉल्स में बड़ी भीड़ होती है और रोड्स पे भी, है ना, लेकिन वॉलेट की भीड़ कम हो जाती है, तो कभी खुशी कभी गम। वैसे आप अपने वीकेंड को कौन सी मूवी का नाम देना चाहेंगे जरूर मुझे बताइए। टाइटल इंस्टा पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और आप किस हैप्पी वीकेंड वाली जर्नी का क्या नाम देंगे। लेकिन मैं तो इसको हैप्पी वीकेंड ही देता हूँ, क्योंकि जी हम तो बढ़िया सी धुन जब आपके लिए चलाते हैं तो हमारा तो जी आपकी स्माइल देख के ही हैप्पी वाला वीकेंड हो जाता है और दिल कहता है जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
0: रेडियो ऑलिव पर
3: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना. फ्रेश है,
0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर
3: ये गाना.

हर किसी ने ना कहीं से स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं से शुरुआत की है, तब जाके आज वो एक हीरे जैसा चमका है। नहीं, as like you, 106.3 रेडियो ओलिव से आपके दिल की आवाज। मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ जनाब। सेलिब्रेशन तो वैसे आपकी उन सक्सेस का भी करना चाहिए जिनके लिए आपने कितनी कड़ी मेहनत करी है, क्या क्या एफर्ट्स है, कितने रिजेक्शन है और कितने लोगों के टॉक्सिक नेचर को झेला। नहीं, लेकिन बहुत कुछ सहने के बाद भी आप भी आज चमक रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे SRK भी चमक रहे हैं। अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की उन्होंने जरा सोची और बताइए मुझे, यानी कि शाहरुख खान की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी एज अ लीड हीरो, जल्दी से मुझे बताइए। इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑल एफ का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और आंसर कर दीजिए, या फिर इंस्टा पे ही आरजे आकाश के नाम से मेरा पेज मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप फॉलो करके इनबॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं और बढ़िया सा गाना मैं आपके नाम के साथ डेडिकेट करूंगा। तो कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑल एफ। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: द बिग Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर. कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन. या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.

बाजीगर SRK को बनाता है सुपरस्टार, पर शुरुआत हुई थी कुछ और मेरे यार, तो बाजीगर तो नहीं है, इतने सारे लोगों ने आंसर किया। 106.3 रेडियो ऑलिव्स से आपके दिल की आवाज, मैं हूं RJ आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूं मेरी जान। और अभी करेक्ट आंसर का जवाब, मतलब करेक्ट आंसर बताते हैं। जो जवाब आया है वो है अभिषेक की ओर से, दीवाना 1992, ऋषि कपूर और दिव्या भारती के ऑपोजिट डेब्यूट। जी हाँ, SRK की एंट्री ना बिल्कुल धमाकेदार थी, तब से दिलों पे आज तक राज कर रहे हैं जनाब, और ऐसे ही राज करते रहेंगे। वैसे आंसर तो खास दिया है अभिषेक जी ने, बिल्कुल एकदम सटीक। तो चलिए बढ़िया सटीक से गाना चलाते हैं आपके लिए, कहीं जाइएगा नहीं। अभिषेक जी, दिस इज फॉर यू स्पेशली फॉर दिस हैप्पी वीकेंड, ताकि आपका दिल भी कहेगा जियो बिंदास, स्टे ट्यून्ड।

भाई देखो, आप स्टोरी लगाना मत भूलना आज के दिन, क्योंकि आज का दिन होता इतना खास है कि कोई अपने पूरे दिन की एक समरी में एक छोटी सी फोटो लगा देता है, तो कोई खाली बैठा घर पे अपनी पुरानी यादों की पोटली में से एक प्यारी सी स्टोरी लगा लेता है। लेकिन स्टोरी जरूर लगती है। 106.3 रेडियो ऑलिट्स आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट करो जनाब आपके साथ। वैसे असली प्रूफ होता है आज के दिन का, अगर आपने एंजॉय किया है, कि इंस्टा पे एक स्टोरी तो बनती है। तो अगर देखो आप घर पे हो, अगर आप कहीं नहीं गए, और अगर आप कहीं गए भी हो और आप वहां से मुझे सुन रहे हो, तो मुझे सुनते हुए एक बढ़िया सी स्टोरी लगा लो, जिसमें मुझे और साथ में रेडियो ऑलिव को टैग कर देना। रेडियो ऑलिव के पेज को फॉलो जरूर कर लेना और टैग करना, और साथ में आरजे आकाश साई के नाम से मेरा भी पेज मिल जाएगा, मुझे भी फॉलो करके टैग कर देना। और बाकी अभी एक बढ़िया सा गाना चला रहा हूँ, किसकी फरमाइश पे? सरफराज की फरमाइश पे गाना चलाने जा रहा हूँ। वाह यार, क्या गाना सुना है भाई, मैं चला रहा हूँ, आपका दिल भी देखना सुन के गया पक्का। जियो बिंदास, स्टे ट्यून्ड।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

चाहिए यार। वैसे जब गाने बजते हैं ना तब इमोशंस भी जग जाते हैं नहीं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट करो जनाब। अच्छा एक गाने के बारे में पूछता हूँ मैं आपसे, जैसे वो बजता है तो आपके पक्का अंदर के जितने भी ख्यालात हैं ना वो सब जग जाते हैं, जितनी भी मेमोरीज हैं, जितने भी सुर हैं सारे बाहर आ जाते हैं। पहला नशा, बताइए कौन से फिल्म का गाना है ये। हिंट देता हूँ, आमिर खान और आयशा झुलका की स्वीट सी केमिस्ट्री वाली फिल्म है ये। तो जल्दी से आप गाने के बारे में बताइए, इंस्टा पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो कर लीजिएगा और अपना जवाब दीजिए। आपके नाम के साथ एक बढ़िया सा गाना डेडिकेट मैं करूंगा यहाँ से, तब तक जियो बिंदास यार।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान.
0: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल.
1: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस. तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में. योर Ultimate Eid Destination.
0: Happy weekend. Happy weekend. Radio Olive Park.
2: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh.
0: Fresh song of the hour.
2: Ye gana.

प्यार का नशा, फिल्मी हवा, याद आ गया ना सबको वही जमाना। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ जनाब आपके साथ। और करेक्ट आंसर आ गया मेरे पास, पंकज जी ने भेजा है। क्या बात है पंकज, ये मेरे को याद है नहीं का बहुत पहले टेक्स्ट भी आया था एक और बार इसी मूवी से रिलेटेड जब मैंने क्वेश्चन पूछा था। और राइट आंसर है इस गाने के बारे में जिस गाने का मैंने आपसे पूछा था, पहला नशा पहला। वैसे तो पहला हमेशा प्यार ही रहा है, तो इस प्यार भरे जवाब को लाए हैं प्यारे तरीके से पंकज जी। ये गाना है ओल्ड स्कूल कॉलेज के प्यार की यादों को जो जिंदा कर देता है। मूवी है जो जीता वही सिकंदर, 1992 की मूवी है। वैसे यादों का नशा और म्यूजिक का ब्लास्ट, सुनते रहेंगे हम रेडियो ऑलिव और दिल से कहते रहेंगे जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

अच्छा जब हम अपने घर में किससे पूछते हैं आज खाने में क्या बना है, और उसके बाद वो मुंह सा चढ़ जाता है कि जब अपने मनपसंद की चीज़ ना हो। और सोचो अगर वीकेंड वाले दिन आपको कोई पत्ता गोभी या कोई ऐसी चीज़ खिला दे, पालक पनीर वगैरह, ये सब क्या करो, पालक पनीर तो बढ़िया लगता है यार। पता क्या, मुझे पनीर तो अच्छा लगता है, उसका पालक पसंद नहीं है। 106.3 रेडियो ऑलिव्स आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ जनाब आपके साथ। और हैप्पी तो वो तभी होता है जब हर चीज़ अपने हिसाब से हो, लेकिन हर चीज़ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, है ना। अगर यहाँ दाल मखनी मिल जाए तो बिरयानी की रह जाएगी, बिरयानी चाहिए तो वो रह जाएगा। इसलिए आज आप क्या स्पेशल बना रहे हो, मैं तो सच्ची कह रहा हूँ खुद को थोड़ा बहुत तो इतना तो आना ही चाहिए, कुछ नहीं तो अपनी फेवरेट डिश बनानी आनी चाहिए। पर आपको तो देखो आप उसके गैस के रेगुलेटर को ही नहीं घुमा पाते, आपको ये नहीं समझ आता कि लेफ्ट लूँ कि राइट लूँ, है ना। गाड़ी का स्टेयरिंग संभालने चल रही है। वैसे आज का स्पेशल बन रहा है आपकी किचन में या मॉम्स किचन में, या फिर आप मास्टर शेफ है तो ही बता दीजिए। इंस्टा पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और क्या लजीज बन रहा है फोटो के साथ भेज दीजिए। फिलहाल इस गाने के साथ लजीज सा स्वाद आएगा, मेरा मतलब शाम का स्वाद आ जाएगा, इस प्यारी सी शाम का तो कहीं जाएगा नहीं। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, सी यू बिंदास।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: गानों के साथ यह हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनेस.
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर.

अच्छा दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमना है गाड़ी में, एक के पास गाड़ी होती है उसके साथ चार घूम रहे होते हैं वीकेंड वाले दिन, लेकिन डिसाइड उनमें से वो बंदा कर रहा होता है जिसकी ना तो गाड़ी है ना जिसकी चलती है, फिर भी वो बेचारा अपने पॉइंट रखता है कि यार यहाँ चलते हैं। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज़, मैं हूँ आरजे आकाश, हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ जनाब। वैसे इतने सारे मॉल्स में घूमना किसी का शौक हो सकता है, तो किसी का शौक सूक वाकिफ की गलियों में घूमना हो सकता है, वहाँ के एक सबसे मेन पॉइंट्स पे जहाँ पे यू नो वो थंप है वहाँ जाके घूमने का मन हो सकता है। तो कोई किसी का मन करता है किसी समुद्र किनारे बैठ जाना, या फिर किसी का मन कर सकता है डाउन टाउन की तरफ घूम जाना, मतलब हर किसी का अपना अपना मन होता है। तो किसी का मन होता है आज घर में ही बैठे रह जाना, भाई देखो घर वालों का तो सिंपल है कि घर में बैठे रह गए, बाकी सबको कह दिया तुम लोग जाओ मैं आज अपना नेटफ्लिक्स एंजॉय करने वाला हूँ, राइट। लेकिन वो क्या जो बेचारे जाना तो कहीं चाहते हैं लेकिन ग्रुप की वजह से कहीं जा नहीं पाते, क्योंकि ग्रुप उनका वहाँ जा रहा कहीं और गाड़ी एक के पास है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं मेरे को बताइएगा जरूर। आपका फैसला क्या होता है जब वीकेंड पे सबकी राय एक तरफ और आपकी राय एक तरफ, बताइएगा मुझे इंस्टा पे रेडियो ऑलिव का पेज पे फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और अपनी शक्तिशाली शक्तियों के बारे में बताइए मुझे कहाँ निकल जाते हैं आप अकेले। फिलहाल सुन रही है रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

भाई देखो, नई फिल्मों के बारे में मैंने देखा है कि अब की जो जनरेशन है ना, उनको पता है, लेकिन पुराने लोगों को इतना नहीं पता। अब हम जो 90s के किड्स हैं खासकर, उनको ना आजकल की फिल्म्स की कितनी अपडेट है या फिर क्या है, वो तो एक बार को परख लिया जाता है। अरे आपको ये नहीं पता, बच्चे छोटे बच्चे कहते हैं आपको ये नहीं पता, लेकिन अब जरा इन बच्चों को ना, अगर कोई बच्चा मुझे सब सुन रहा है या फिर कोई ऐसे जनरेशन का है, ऐसी कोई जेंस का है जो अभी 20s के टाइम में आया है, राइट, बहुत सारे लोग होंगे इस समय जो सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरे पास एक सवाल है। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज़, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब हम। पुराने ज़माने का क्विज है, तो नए लिसनर्स के लिए क्या सरप्राइज होगा, है ना। बताइए कौन से फिल्म का सॉन्ग है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और ये जवाब देने के लिए आप अंडर 18 होने चाहिए हो। अगर आप 18 साल से कम के, तो जल्दी से मुझे जवाब दो। इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश। अगर आप 18 प्लस भी हैं तो बस मेंशन कर दीजिएगा, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा आप कितने साल के, लेकिन 18 से कम वाले जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि देखे तो सही किसको कितना ज्ञान है, मूवी से कितना प्यार है, बॉलीवुड से कितना दुलार है, और इन गानों से बस रूह में बसे पड़े हैं गाने। वैसे गाने का गेस हो जाए तो फास्ट आपका दिल भी कहेगा सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, और जीते रहिए जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: आते हैं, जैसे बच्चे माँ बाप को रॉन्ग साबित कर देना तो माँ बाप को अलग खुशी होती है, इसी तरह से अगर मेरे लिसनर मुझे रॉन्ग साबित कर देना कि 18 से कम के बच्चों को भी आज भी मतलब पुराने बॉलीवुड यानी कि वो गोल्डन टाइम के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है तो दिल को खुशी होती है। वाह क्षितिज वाह। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ जनाब। वैसे दार्जिलिंग की ट्रेन और राजेश खन्ना का स्वैग, सही आंसर है आराधना 1969। मैंने पूछा था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, कौन सी मूवी का गाना है, तो यहाँ पर बहुत सही आंसर करेक्ट आंसर दिया है मुझे। वैसे ये गाना राजेश खन्ना के स्टारडॉम की शुरुआत का असली धमाका था, है ना। तो रेट्रो मैजिक हो या फिल्मी क्लास, आप सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान.
0: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल.
1: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टैक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस. तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में, योर Ultimate Eid Destination.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: दीदी वो क्लॉक तो वैसे दिखा रही है कि मेरे जाने का टाइम हो गया है, लेकिन इस वीकेंड में आपके भी जाने का टाइम हो गया है। धीरे धीरे वीकेंड खत्म हो रहा है, तो आप दिन के खत्म होने से पहले पहले, शाम के खत्म होने से पहले पहले बस मुझे ये जरूर मैसेज कर दीजिएगा कि आज का बेस्ट मोमेंट क्या रहा आपके लिए। 106.3 रेडियो ऑलिव्स से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेट कर रहा हूँ मेरी जान आपके साथ, और मेरे को ये जानना था कि आज का हैप्पी मोमेंट कौन सा था आपके लिए। ऑल दो आई नो मेरे साथ गाने सुनना, मेरे साथ इन धुनों को गुनगुनाना, लेकिन उसके अलावा आपके लिए आज का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या रहा आपके हैप्पी वीकेंड का, या फिर कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसको आप आज एंजॉय करने वाले हैं, फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट है या फिर आज शाम को गेट टुगेदर है, जल्दी से मुझे बताइएगा। बाकी जाता जाता बढ़िया से गाने लगा के जा रहा हूँ मेरी जान, चाहे वो आपकी ज़िंदगी का सफ़र हो, चाहे वो इस गाड़ी का, ऐसे खूबसूरत सा बना रहे और आपका वीकेंड हमेशा बहुत प्यारा रहे, है ना। बाकी मिलते हैं मिड नाइट लाउंज में सैटरडे टू वेडनेसडे, एक साथ एंजॉय करेंगे लवली ट्रैक्स को रात को। बाकी इसी तरह मिलते रहेंगे, साथ में गुनगुनाते रहेंगे, दिल भी कहेगा जियो बिंदास। बाय बाय, टेक केयर।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: ईद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान।
1: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल।
0: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस। तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में। Your ultimate Eid destination.
2: You are now tuned

0: उम्मीद की महकती शाम, चांद की रोशनी और खुशियों का एक हसीन जहान।
1: इस ईद हर लम्हा होगा और भी खास एट अबू सिद्रा मॉल।
0: आइए सेलिब्रेट करिए लयाली ईद 27th, 28th और 29th मई को शाम 6 बजे से 10 बजे तक, जहां इंतजार कर रहा है स्पेक्टेक्युलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग किड्स एक्टिविटीज और ढेर सारी ईद सरप्राइजेस। तो इस ईद फैमिली के साथ बनाए यादें सिर्फ अबू सिद्रा मॉल में। Your ultimate Eid destination.
2: This is Club On Air.

आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ओलिव 106.3

0: बापू आ गायन तो जबरदस्त हिट छे।
1: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।